नानक के शरीर के दर्शन करते उनके चरणों की छोर प्राप्त होती, कितने बड़े भाग होते हमारे। लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते, भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं, जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल और फ्रूटलैस हैं, उन्हां दा कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी दे सामने अर्ज कीतियां हैं। एक, नाम बिना नर्क कही न लेख है, नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार, नाम तो बिना ये शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हन इस काया रूपी कर दे वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसरत तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ये भी आख्या है,

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उन्हां नालों सैपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए हो। विचार आंदा है, तुसी उस दे विच रल जांदे। पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ विटनेस करन वाले, अपने आप नु सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ अते जो विचार है उन्हां दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट यू कीप आई ऑन योर एवरी सिंगल थॉट द मिनट इट क्रीप्स इन एंड व्हाट इट डज इनसाइड यू, फॉर हाउ लॉन्ग इट स्टेज इनसाइड यू एंड देन हाउ द सेकंड थॉट इज फॉलोड बाय। कहते ट्राई टू सी द होल प्रोसेस ऑफ थॉट्स कमिंग एंड गोइंग। अपने विचार अस्वारी कीजे, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ, अते फिर अपने अंदर जिस तरह से बाहर कोई तुरिया फिरता है उसनु देख सकते हैं। ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरता है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरता है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरता है, असी अलग चेयर पे बैठ के सिर्फ उसनु वाच कर सकते हैं। टेलीविजन दे उत्ते तस्वीरां चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असी अलग चेयर दे उत्ते बैठ जाने हैं तो उसे उन्होंने देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार अस्वारी कीजिए, अपने विचारां दे उत्ते अस्वारी करो, भाव कि उन्होंने इनडिफरेंट होके उन्हां नालों अलग होके जस्ट वाच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकनेक्टेड यूअर सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप में थॉट्स को अलग कर ले, अपने विचार अस्वारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है ना, उस लई बुरा ख्याल बनाना, क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे, ना उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वाच दैम। सिर्फ उन्होंने देखना है, अपने विचार अस्वारी कीजे दा मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्होंने देखो। तुसी कोशिश करके करन दी देखो कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नु करना है, अपने विचार अस्वारी कीजिए, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हां दा जो फ्लो है उसनु देखना है। जदों तुसी देखोगे, थॉट्स नु देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा। थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, तां थॉट जो है वो स्प्रेड हुंदा है, वधदा है, अगां वधदा है। जे तुसी उस दे नाल ही न रले तो थॉट उत्थे सीज होना शुरू हो जाएगा, और उस तो बाद तुसी देखोगे कि विद इन सैकेंड्स एक होर थॉट आना शुरू होया। बट इन बिटवीन फर्स्ट थॉट एंड सैकेंड थॉट यू विल फाइंड ए वेरी स्मॉल गैप, फ्यू सैकेंड्स का गैप, अते उस गैप के विच जदों के थॉट नहीं है की है, सिर्फ एक वाचर है जो कि विटनेस कर रहे हैं, जो कि देख रहे हैं। वो वाचर कौन है? वो साड़ी आत्मा है, वो साड़ी बीइंग। सो इन दोज ग्लिम्प्स वी एक्सपीरियंस अवर बीइंग फ्री फ्रॉम थॉट्स। तो जितना जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाओगे
ਉਤਨਾ ਉਤਨੇ ਉਹ ਗੈਪਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੈਪਸ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਆਹ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਸਾਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ। ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਰ, ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਜੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਅਚਾਨਕ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਟ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਥਾਟ ਆਵੇ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲ ਦੇਣੀ, ਕਿਹੜੀ?

गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके पंजा प्यारियां नूं छकाया, उपरंत आप छकिया अते खालसा पंथ दी सिरजना करके सानू एक वखरा ही स्वरूप दे दिता, ताके सिख लखां विच कल्ला खड़ा होया भी दूरों ही नजर आवे। इसे करके अज असी बड़े मान नाल एक कह रहे हां, साडा मुंह मुहांदरा वखरा है, साडा रूप वखरा, साडा रंग वखरा, किसे कौम दे नाल नहीं मेल खांदा, तुरिया आउंदा है साडा पर संग वखरा, साडी आत्मा दे लक्षण वखरे ने, साडे जिस्म दा हर एक अंग वखरा, साडी मौत जहान तो वखरी है, साडा जिंदगी जीण दा ढंग वखरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अकाल अकैडमी गुरुद्वारा बड़ू साहिब जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश दियां बीबियां दे ढाडी जथे दी इन्नी सेवा प्रवान करो, बुलाओ फतेह ते आखो।

ईघ है निर्गुण ऊघ है सरगुण केल करत विच स्वामी मेरा. इन दिस वर्ल्ड यू आर द एब्सोल्यूट फॉर्मलेस लॉर्ड. इन द वर्ल्ड हियर आफ्टर यू आर द रिलेटेड लॉर्ड ऑफ फॉर्म. यू प्ले इट बोथ वेज. नगर में आप बाहर पुन आपन प्रभ मेरे को सगल बसेरा. यू एग्जिस्ट विद इन द सिटी एंड बियॉन्ड इट एज वेल. ओ माय गॉड यू आर एवरीवेयर. आपे ही राजन आपे ही राया कह कह ठाकुर कह कह चेरा. यू योरसेल्फ आर द किंग एंड यू योरसेल्फ आर द सब्जेक्ट. In one place you are the Lord and Master, and in another place you are the disciple. Kako durao kasyo balbancha jeh jeh pekho teh teh neera. From whom should I hide? Whom should I try to deceive? Wherever I look, I see you near at hand. Sad murat gur pe tyo nanak मिल सागर बूंद नहीं अनहीरा. ओ नानक आई हैव मेट विद गुरु द एम्बॉडीमेंट ऑफ होली सेंट्स. लाइक द ड्रॉप ऑफ वाटर मर्जेस इनटू द ओशन इट कैनॉट बी डिस्टिंग्विश्ड एज सेपरेट अगेन. मैं नाही प्रभु सब कुछ तेरा. द शब्द इज कंपोज्ड इन राग एमली बिलावल. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ राग यमन एंड राग बिलावल. And the taal is Panjtaal di Swari, 15 beats.

0: कोई नाम जाने तेरा।
1: नतान जबान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझे आगे अरदास, मैं होर थाओ नहीं जिते करो बिनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पाते। सुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्ब कला बनियाई, प्रगट भई सगले जुगे अंतरे, गुरु नानक जी वडियाई।
2: आओ अपनियां बिस्तियां कागर करिए, दसना ते सतनाम श्री वाहे।

कबीर साहब अपने घर बैठे सन, किसी ने दरवाजा खड़काया, दरवाजा खोलिया, कौन आया? सिकंदर लोधी बादशाह, एदे सिपाही आए ने।

कबीर साहब जी उठ के तुरन लगे। कबीर साहब दे प्रेमिया ने कहा, कबीर साहब जे बादशाह ने बुलाया फिर खैर नहीं वरतनी, तुसी जान तो इनकार कर दे। पर कबीर साहब ब्रह्म ज्ञानी सन, कह लगे भाई ए हुक्म ए फुरमान सिकंदर लोधी दा नहीं, ए ता मेरे अकाल पुरख दा। जे सिकंदर लोधी दा फुरमान हुंदा ते मैं इनकार कर देंदा, पर जी अकाल पुरख दा फुरमान है ते मैं किवें इनकार करां। नाले एके आ ते नाले शिपाहियां दे नाल।

सिकंदर लोधी दे दरबार विच पहुंचे। बादशाह सिंघासन ते बैठा है, दरबारी बैठे ने। नाशवान बादशाह समझ के कबीर साहब ने सलाम नहीं कीती। सिकंदर लोधी नूं होर क्रोध चढ़ गया। एक ता निंदका ने पहला कन भरे सन। बादशाह कहंदा कबीर

तू मैनू सलाम नहीं कीती। ते कबीर साहब फिर की कहंदे ने बादशाह दे मस्तक वल तकिया ते हंकार दिसिया ते नाले इउं कहिया

तू मेरे हरी दी समानता है नहीं कि मैं तेनू सलाम करा। ओदी बादशाही जुगो जुग अटल,

बादशाह नु क्रोध चढ़ गया, सिपाहियां नु हुक्म दिता एदे हाथ पैर बन के इनू गंगा दे विच डोब के मार दियो। मैं देखना इस दा राम इस नू किस तरह बचांदा है। कबीर साहब दे हथां पैरां विच बेड़ियां पा के गंगा वाल सिपाही लै के तुर पए ने।

छिपाई आली वापस नहीं पहुंची। कबीर साहब पहला ही घर पहुंच गए। कबीर साहब दे श्रद्धालुआं ने बड़ी खुशी मनाई। सारे शहर विच जलूस कढ़िया जा रहे है। कबीर जी कबीर दे राम ने रखिया कीती। बादशाह नूं पता लगा है हाली कबीर मरिया नहीं। फिर सिपाही भेजे ने सिपाहियां ने फड़ लिया। बादशाह कहिंदा ठीक है जे पानी विच नहीं मरिया इनू अग विच साड़ के मार दे। एक बड़ा वड्डा लकड़ां दा ढेर कठा कीता। कबीर साहब नूं लकड़ां दे उत्ते बठा के उत्ते भी लकड़ां चिणन लग पए। चार छफेरे नंगियां तलवारां दा पहरा है। ए समझदे ने कि कबीर कोई जादूगर है। कबीर साहब दे प्रेमी रोन लग पए ने पर कबीर साहब अडोल लकड़ां ते बैठे हुए अपनी श्रद्धालुओं नूं की समझांदे ने।

जे अकाल पुरख ने मेनू साड़ना है ते बचा कोई नहीं सकदा, जे उन्ने मेरी रक्षा करनी ते फिर मेनू कोई साड़ नहीं सकदा।

पर ओ जड़ा हाथी ओ कबीर साहब नू लताड़दा नहीं। बड़ी कोशिश की थी पर ओ जड़ा हाथी अगले दोनों पैर नवा के कबीर साहब नू मथा

दान स्नान दड़ाए नाम दान स्नान दड़ाए मिठा बोलण मिठा बोलण निवचरण हथों दे के भला मनाए हथों दे के भला मनाए थोड़ा सवना खावना

मान मोह विकार मन का जागे सत जना मेरे राम प्यारे राम प्यारे सदा जागे हर नाम सिमरै अंदनों चरण कमल त्यार हृदय।

तू बेअंत को विरला जाने को विरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा नाना रूप तरी बहुरंगी सब तेरे नियारे तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत।

शिमरस वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होशियां नाम तो बिना मनुख सखना है इसलिए महाराज ने नाम अमृत सानू बख्शन लई सब तो पहला पंज बाणियां दा अमृत खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके साडे मुख विच पाया अमृत ते आख्या ऐ गुरु के सिख हुण जदों तू गुरु के शब्द दी कमाई करेगा ना तेरा मन निर्मल हो जाएगा जितनी कोई मुशक्कत कालेगा आप ही नहीं सारा कुटुंब ही तार के दरगाह नू लै जाएगा इसलिए महाराज बख्शिश कर रहे हैं भाई अमृत पियो ये बचन अपने पले बनांगे।